वाहे गुरु जी की फतेह। तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी कलगी तर सच्चे पातशाह अपने तकरीब 40 सिंघां दे नाल चमकौर की कच्ची गढ़ी विच ने गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह इज इन चमकौर इन द फोर्ट्रेस ऑफ चमकौर विद अबाउट 40 सिंघस एंड जस्ट आफ्टर टू पीपल कमिंग टू ट्राई एंड थिंकिंग दैट दे कैन जस्ट क्लाइम अपॉन अ लैडर and finish off whatever how many things that they are inside of the fortress in one go. Do jane ne yatan kita ke assi pauri la ke jinne singh andar hage is inna nu apa khatam kar diye, par jis tarah apa kal sarvan kita ke paatshah ji ne ek de ta akhan de vichon teer maar ke onu maar ditta, dusre de sir vich burj mariya ta teesra पौड़ी चढ़न तो ही डर गया ता पहला ही दौड़ गया करके सोचा मेरी ओ हालत ना हो जावे जिहड़ी दो पहलियां दी हुई आ। सो दिस टू दैट हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड दैट हैव बीन किल्ड बाय गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह जी, द थर्ड वन ख्वाजा मरदूद हैज एक्चुअली रन अवे। देन उन्होंने फिर सोचा, मुगलां ने फिर सोचा तो पहाड़ी राजे ने सोचा कि आपां सारे ना एक बार इकट्ठे होके आपां हमला करके आपां इन्हां नूं इक्को वारी सारे नूं मार दिए। लेट्स ऑल गेट टुगेदर, दिस इज व्हाट द आर्मी फर्स्ट थॉट, द ऑपोजिशन आर्मी टू गुरु गोविंद सिंह जी, दे थिंकिंग वेल लेट्स ऑल गेट टुगेदर एज मेनी एज वी कैन, लेट्स चार्ज द डोर ऑफ द फोर्ट्रेस, लेट्स गेट इनसाइड एंड लेट्स जस्ट गेट रिड ऑफ देम स्ट्रेट अवे। ऐदां ही उन्होंने यत्न किया। So they've all come together and they're charging forward towards the door of the fortress. Par unna nu ki pata jehde andar singh ne ke unna di asal vich avastha ki je. They don't know the things that are inside that gadi, that fortress, what state of mind that they are in. Oh ta asal vich na oh avastha vich ne oh singh jehde andar gadi vich ne ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ, ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਦੁਆਰ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ, ਤੇ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਆਰ ਇਨਸਾਈਡ, ਦੇ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਦੇ ਇਨ ਦਿਸ ਅਵਸਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਰੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਰੋਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਕਬੀਰ

वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। कल अपा सबना ने बीबी शरण कौर का इतिहास सरवण किया। बीबी शरण कौर जदों अपने भरावां दा जिथे शरीरां नूं जिथे संभालदी पई, where she was lifting up the bodies of our brothers that we went through yesterday, उहनां दे विच्चों ना एक शरीर इतिहास लिखदा जिस दा नाम सी भाई प्रीतम सिंह। तो प्यारे ओ भाई प्रीतम सिंह ना उस बीबी शरण कौर दा ओ कांत पति सी। Amongst those bodies that she was lifting, amongst there was the body of her husband too. पर देख लो उस दा जिगरा, उन्हों भी शहीद किता गया। आपा एहो जे शहीदां नूं आपा भुलीए ना, बीबी शरण कौर वर्गियां नूं आपा जरूर सारे, इस भैण दा भी आपा नाम अंदर वसाईए, जिवें आपा बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जुराब सिंह, बाबा फतेह सिंह दा जिवें आपा याद, उन्हां दा नाम याद करके रखदे आं, आपा इहो जिहा शहीदां दा भी नाम जरूर आपा याद करिए। सो मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, कलगीधर पातशाह जी, व्हेन दे लेफ्ट चमकौर दी गढ़ी ऑन द नाइट ऑफ द 22nd ऑफ दिसंबर, गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह जी शाम दे समय, तो पातशाह जी जदों उत्थों निकले ना चमकौर दी गढ़ी तों

0: ठाकुर ने एक काज रचाया, एक काम मेरे तो परमात्मा ने कराया। एंड व्हाट हैपेंड, तन हृदय नाम वगासी, अंदरों की होया, अंदरों प्रकाश हो गया, वगास हो गया, डेवलपमेंट। वगास मींस टू डेवलप। यू नो व्हेन, मैं एक मिनट इतने एक गल कहनी है, क्योंकि मैनू ना किसी ने एक गल कही सी, दे सेड टू मी यू शुडंट आस्क क्वेश्चंस, यू शुडंट आस्क क्वेश्चंस। यू नो अजकल ना जो बच्चा सवाल पूछता, जे किसी को जवाब ना हो, दसा की कहते हैं, बाबा जी इदा ना पुछो, सवाल ना करो बाबा जी, साडे बाबा जी ने, बाबा जी सवाल ना करो, जेड़ा सवाल करेगा एदा मतलब शरदा नहीं है। इफ यू क्वेश्चन समबडी, दे से दैट यू डोंट हैव फेथ, बट गेस व्हाट, योर गुरु टीचेस यू टू क्वेश्चन इन लाइफ। You know when you're at school and you don't understand something, do you just sit there? Let the teacher carry on saying what they're saying? No, you don't. You question it, don't you? Hun paino, samajh nahi aayi teacher ki keh rahi aa, aapa utthe baithe rahiye na, teacher nu nahi aapa question karna, kyunki saadi sharda jo teacher ne kehta bas theek aa, pama samajh aayi aa, pama na aayi koi na, pama fail ho ji exam, question na karna. It's true, isn't it? This is where our mentality is. And you know why people say don't question? Kyunki ajkal idda de pakhandi babbe ne jehde gal kehti kehti koi na, par jadon aapa sawal karde haan ke baba ji idda kyon, unna ne agge us chele hi hunde ne kehna wale, idda na baba ji nu question kar, jehde question karde ne unna nu koi kripa nahi hundi, bharosa rakho baba ji ne jo kehta bharosa rakho yaar, ethe tak saadi gal le gaye ethe tak. And you know what, गुरु नानक पातशाह ने सानू क्वेश्चन करना सिखा लिया। किवें? गुरु नानक पातशाह जो जनऊ नहीं पा लगे सके, गुरु नानक पातशाह दे जनऊ, द जनऊ इज दैट सेक्रेड थ्रेड, व्हेन दे वर अबाउट टू प्लेस इट ऑन गुरु नानक देव जी, दे सेड देयर इज माय सिस्टर, आई वांट माय सिस्टर टू वेयर इट टू, दे क्वेश्चन इट, डिडंट दे, दे सेड आई वांट माय मदर टू वेयर दैट जनऊ टू, एंड दे सेड अ वुमन कांट वेयर दिस सेक्रेड थ्रेड। एंड यू नो व्हाट गुरु नानक देव जी सेड, If a woman can't wear it, if my mom and sister can't wear it, then I'm not going to wear it either. They questioned it.
1: Jadon paani suraj wal pa rahe sige ke dadiyan pardadiyan tak jayega hai na paani, this water will go to your ancestors. Guru Nanak Dev Ji turns around and starts putting the water towards his crops. Apne khetan wal Guru Nanak Pasha paani pa lagge, they questioned it. And jehde us vele sige kehn lage paande, kehn lage aa ki tusi kar rahe ho, साडे सिखां विच भी पखंडी पांडे भाव बाबे आ गए ने, सारे धर्मां विच हुंदे ने, माड़े चंगे सारे धर्मां च ने, ए नहीं के सारे माड़े ने, पर साडे सिखां विच भी ए पांडे पखंडी बाबे आ गए, जिहड़े कह रहे आ क्वेश्चन नहीं करना। गुरु नानक पातशाह ने की कहा सी, ए पांडे ओ तुसी कह रहे हैं पानी जाऊगा दादे परदादियां तक, मैनू हस रहे हैं कि पानी खेतां वल पा रहे हैं, You're laughing at me because I'm sending this water towards my crops, but you're saying by sending this water towards the sun, it will go to the ancestors? Tell me, is my crops closer or is the sun closer? Suraj ko lag gaya ke mere khet lag gaya, us vele pande vi soch lag gaye, yaar sahi gall aa, khet lag gaye ne suraj naalo, the crops are closer than the sun. And that's when Guru Nanak Dev Ji taught them, ki no question everything when you're told. If somebody tells you to read Gurbani, question it. Don't just say, okay, they've told me and I'm going to do it. No, when you question it, what will happen? You'll get a better understanding. If somebody tells you to grow your hair, question it. And you'll get a better understanding. And I tell you one thing, when you question it and do it, your mind will be so developed. If somebody tells you to cut your hair, you will turn around and say, why don't you keep your hair? I don't cut my hair for this reason. Why do you cut your hair? Flip the question when you understand it. Because when you don't, you're just going to be walking around like everybody else. You're going to be following like the sheep. ਜਿਵੇਂ ਭੇਡ ਨੀ ਬੱਕਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਯੋਰ ਮਾਇੰਡ ਵਿਲ ਡਿਵੈਲਪ, ਐਂਡ ਦ ਡੇ ਯੋਰ ਮਾਇੰਡ ਡਿਵੈਲਪਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ
2: ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
1: ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੰਕਤੀ ਇਨ ਟੂ ਅ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲਸ ਲਾਈਫ,
0: Don't always believe what other people say about your wife. Have trust in your wife. If somebody says to you, your wife is doing this behind your back, don't go back and start beating your wife up. Sit down and question, is this happening? Is this happening? If your husband is going around or somebody tells you, do you know your husband's doing this behind your back? Don't go to your husband and slap him or start arguing. Sit down with your husband and ask, is this true? Question it. And when you question it, you'll get answers, and those answers will take that doubt out of your mind.
2: Sri
0: Vaheguru. Aakhri pankti vich Maharaj eh samajhaunde ne Guru Ramdas Paatshah.

भगवाना तुमरी महिमा बरना साको, तू ठाकुर पूछ भगवाना। गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन महसह है।

मैं मूरख किछ दीजै परणवत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै परणवत नानक सुन मेरे साहिबा